0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अनुष्ठानटी निवेदन करलो भारत सरकारेर कृषि ओ कृषक कल्याण मंत्रणालय।

0: तितली, ए तितली, इधर आ।
1: हाँ बोलो।
0: जा पानी ले आए।
1: फिर तुम्हें दारू खबे? कामे जाबे ना?
0: हाँ हाँ दारू खबो। हमार खुशी में तो दिन भर दारू पीबो। जा तो पानी ले आए।
1: पानी ला।
0: ए, जा तो बात मत कर।
1: हाँ हाँ खुशी में तो दिन भर दारू पियो। हमें किछु बोलबो ना, हमें किछु बोलबो ना।
0: ए, फिन तू कांचिस केनो तितली? अरे झिंकू की मुरे गए छे आ? तितली, ए, एक कपड़ा उपड़ा लिए तू कोथा जा छीस? अरे बोल, बात बोल।
1: बापुर का छे?
2: बापुर का छे?
0: बापुर का छे जा छीस ना तो रही गया राजा घोड़े लालेर का छे जा छीस आ?
1: चुप रहो।
0: केना रे तितली, हाँ? गया राजा की हमार मनी बासे।
3: ओ बुढ़ा एक लंबर।
1: तुमर थे के बहुत सच्चा आदमी आचे।
0: सच्चा आदमी हाँ? तर गया राजा दारू खाए ना, सट्ठा खेले ना। लेकिन हमार औरत के तितली के देख ले और निशा लागे। जिंदगी भर और निशा थे के जाबे।
1: चिल्ला मत। गैया राजा, ए गैया राजा, दरवाजा खोल।
4: कहाँ?
1: हमें तितली अच्छी बहुत विपद, दरवाजा खोल।
4: तितली?
1: हाँ।
4: तू ए तो राते?
1: हाँ। बाबूजी हाल बहुत बहुत खराब हो गेलो, अस्पताल थे के खबर लिए सचे। रामू चाचा बोलो।
4: हाँ हाँ हाँ की की की बोलो रामू?
1: हमार बाबू और बचबे ना गया राजा।
4: तितली?
1: हाँ, डॉक्टर सब छुट्टी।
4: लेकिन जिंकू को था?
1: जानी ना, तू रोज घरे पीछे ना, एकुन एकुन की होबे गया राजा।
4: अस्पताल जेते होबे, आमी जाची, तू यो चल।
1: हमी हमी जबो।
4: हाँ।
1: इकोन इ भाभे
4: क्या ना तोर की हालत इतनी? ओ ओ ओ ओ हाँ हाँ हाँ ठीक ठीक बात, तोर तबीयत भालो नहीं, ए ए टाइम में तो के जेते होवे ना। और रामू हाँ ब्रिजलाल सुबाई के नहीं है, आमी अस्पताल ले जाची, तू जा जा अपना घर चले जा जा।
1: पापू भालो होवे ना गया राजा? छड़ा हमार के उन्हें
4: सुन तितली सुन,
1: जिनको जिनको भी हम के पसंद करे ना घरे थाके ना।
4: अरे रो ना, तू कांदिस नहीं तितली, ये टाइम में तोर कांदे नहीं। अरे सुन सुन, तू माँ बन भी को तो खुशी थे थक भी जा जा अपना घरे चले जा जा। हमारा सुबह ही अस्पताल ले जाची जा। अरे सोचो मत जा जा, जा।
0: तितली, ए तितली, रे तुर बापुर मो तो तू यो मोरे गे छिस ना की या?
1: से होले तो बहुत भालो हो तो।
0: खाना बनास नी की ना?
1: हमार तबियत भालो नहीं, काम करते पाछी ना।
0: हाँ, गया रा मेर संगे बात कर टाइम मिल छे, और खाना बनाते टाइम मिल छे ना। तो बहुत सियाना होए गे छे। बोल घोड़े लाली धर किनो आस।

0: এতক্ষণ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে শুনলেন তবলা, পরিবেশনায় শিল্পী হিন্দোল মজুমদার। শিল্পীকে হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেছেন সনাতন গোস্বামী। আকাশবাণী কলকাতা, অনুষ্ঠান শুনছেন গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে, একটু পরে দিল্লি কেন্দ্র।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে রবি কাপুর। संसद का मानसून सत्र संपन्न हो गया है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा और

0: तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में कल लाइबेरिया के नए दूतावास का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली में लाइबेरिया का स्थायी मिशन शुरू होना भारत लाइबेरिया संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुई आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा ए कायदा ए हिंद को जिम्मेदार ठहरा है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलारूपों में योगदान के लिए दिए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण 8 रजत और 14 कांस्य समेत कुल 35 पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The monsoon session of Parliament has concluded with both houses being adjourned sine die yesterday. The session began on July 20 and saw a total of 19 sittings over 25 days. In all, 12 bills were passed by the Parliament, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the House managed to fulfill its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up.
1: Earlier, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 was passed by the Parliament, with the Rajya Sabha approving it yesterday. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has accused the opposition of running away from discussions in Parliament when the